0: स्थान आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बनेपा नगरपालिका 5 काभ्रे पलाञ्चोक। समय बिहान 7 बजेदेखि। सम्पर्क फोन नम्बर 011-6621-34, 98-40-49-77-05, 98-512-071-34। एक वर्षदेखि 5 वर्षका बालबालिकाहरूका लागि स्वर्णबिन्दु थोपा खुवाऊ। मौकाको फाइदा लिएर आफ्नो बालबालिकाहरूलाई स्वस्थ तथा निरोगी बनाऊ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय भनेपा 5 काभ्रे पलाञ्चोक।
1: बेजा बेजा बेजा बेजा।

वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्टर लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।

0: मैं सिर्फ भाषण नहीं दूंगा, राशन भी दूंगा, पीने का साफ पानी भी दूंगा, सड़कों का जाल बिछा दूंगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा, हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचा दूंगा।
1: What happened?
2: I'm allergic to bullshit.
3: Bullshit, bullshit, bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic.

0: टुटकुले साहब, जनता को जगाने का वक्त आ गया है।
1: इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं।
2: इट्स द प्राइम टाइम।
3: यति बेला रात को 10 बजे को छ।